0: Undoubtedly, what happened is a blot on a democracy, but would you not agree that your own party colleagues didn't speak much on this issue as they should have spoken about it? There were reports that Mr. Mallikarjun himself expressed displeasure over this fact that he didn't get the...
1: No, that's not what he... That is not actually what happened.
2: What happened is that he said certain people did not support him. He did not in any way say that the vast majority of Congress people didn't support him. I supported him. Whole number of other people supported him. He was pointing to a set of people who he felt didn't support him. But dekhe, ye, frankly, main aapko bolu, aur meri iske baare mein Kharge ji se baat hui. Ye Kharge ji ke issue nahi hai. Ye Hindustan का हर दलित व्यक्ति छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक की इशू है. हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं, बीजेपी के नेता शुद्धिकरण करते हैं. कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी है, मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो रामलीला ग्राउंड में हल्द्वानी में जाते हैं भाषण देने, और वहां पर शुद्धिकरण होता है. और उनकी पार्टी का उदाहरण बिहार के चीफ मिनिस्टर मांझी जी, वो मंदिर में जाते हैं और वहां शुद्धिकरण होता है. ये करता कौन है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं. सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं, और ये क्राइम है. आज भी स्कूल में दलित बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जाता है, झाड़ू पोछा लगवाया जाता है. अब सोचिए फ्यूचर जेनरेशन के माइंड में क्या इफेक्ट जाएगा, कि बच्चे देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, और जो झाड़ू लगा रहे हैं वो देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे झाड़ू नहीं लगाते हैं. ये रियलिटी है हिंदुस्तान की. कुएं पर दलितों को पानी नहीं पीने देते हैं. यहां पे इन्होंने अपना पर्सनल, इनको पर्सनल कुआं खोदना पड़ा, क्योंकि इनके गांव के कुएं में पानी नहीं पीने दे रहे थे. चाय की दुकान पर ये देखिए दो तरीके के कप चलते हैं. एक शीशा का कप होता है, रियूजेबल कप होता है, जिसको धोया जा सकता है, और दूसरा पेपर या प्लास्टिक कप होता है जिसको फेंक दिया जाता है. प्लास्टिक वाला, पेपर वाला दलितों के लिए, और कांच वाला दूसरे लोगों के लिए.
3: When a parliamentarian, and I'm talking about your colleague Kangana Ranaut.
4: Don't restrict freedom to the parliamentarian. Freedom is there for every Indian.
3: Okay. So it's freedom for Kangana Ranaut to take on Kriti Sanon and say that.
4: Why are you restricted to Kangana Ranaut? Kangana Ranaut is a first-time MP, very junior, and sometimes I will tell her how to function in a parliament business and other things. But
3: you are a minister, you are the parliamentary affairs.
4: That's what I'm saying. As a parliamentary affairs, I can guide for parliamentary procedure. But I can't guide her what to speak, what not to speak.
3: I agree.
4: These are personal choice.
3: But should some leader show restraint? And I'll give you another example. At the same time, when the Prime Minister was striking such a reconciliatory tone of forgiveness with students, at the same time you had certain ministers like her again who called Gen Z gutter generation.
4: No, that I heard it. She didn't say that. She says that those who abuse, not everybody. She clarified it.

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
5: परिवार, अटूट भरोसा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने तीन बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: You are watching India Today.

0: and business exchanges. Your Excellency Prime Minister, today I would like us to discuss our specific plans and objectives in details. It is now my great pleasure to give you the floor. Please, Your Excellency.
1: Excellency, my brother, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो, ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजराती फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया, ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेक

0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने ये बुक देखी आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।
1: ओपनिंग रिमार्क
2: was Prime Minister Modi on the talks with Uzbekistan, where he highlighted the grand reception that he received, and he thanked the Uzbekistan president for the excellent hospitality. He mentioned how there was delicious food along with the talented performance by the young artists, and he also said that he felt like he was in India, he was in Gujarat. He also thanked the president for painting the entire city in the Indian tricolors, and he said that this shows that India is very close to the heart of the Uzbekistan president. And in fact, Prime Minister Modi also spoke about the key decisions and the key agreements between the two sides. He talked about how both sides will be organizing a business summit for the key business leaders from both the sides. And he also spoke about the uranium supply. On uranium supply, both the sides will work for a long-term strategy. In fact, while speaking on the new Tashkent city, Prime Minister Modi mentioned about the gift city in Gujarat, and he also invited the delegates from Uzbekistan to visit GIFT City in Gujarat. So those were the key remarks made by the Prime Minister. In fact, after Prime Minister, President Shavkat Mirziyoyev also said that India is a reliable strategic partner. In fact, last year, our bilateral trade exceeded $1 billion for the first time. In recent years, the number of joint ventures has also increased sevenfold. And there are now 14 direct flights between our countries every week. The Lal Bahadur Shastri Center for Indian Culture and the Mahatma Gandhi Center for Indian Studies play an important role in strengthening the humanitarian ties. And the philosophy and practice of yoga are becoming increasingly popular in Uzbekistan. A dedicated yoga federation has been operating since 2018, and a nationwide yoga festival was held across Uzbekistan this June. The introduction of a 30-day visa-free regime for Indian citizens will make a significant contribution to the development of people-to-people contact, tourism and business exchanges as well. So the focus is also on people-to-people ties, and my colleague Pranay Upadhyay is now joining us with more details on this, Pranay. So Prime Minister Modi spoke about the bilateral ties and, in fact, the discussion that were held. And he spoke about uranium supply also, on which he said that both the sides

0: while Amitabh Bachchan appeared as Guru. Nagarjun as Anish. And Moni Roy as Junoon. Who sought the Brahmastra for her mysterious master Dev.
1: Dev bahut taqatwar tha, sabse alag. Astron ki aur ek khas junoon tha usme. Usne namumkin ko mumkin kar diya. Woh ek nahi, kai astron ka usnad hua.
0: However, while Shiva defeats Junoon and prevents the Brahmastra from falling into the wrong hands, the biggest reveal comes after the climax. Dev is finally introduced.
2: इसके लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी आपने मेरे लिए जो शब्द प्रयोग किए, जो उदारता की अभिव्यक्ति की, मैं समझता हूं कि भारत की हजारों साल की विरासत, विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर के जीने वाले हिंदुस्तान की पहचान और 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ को आपने बहुत ही कम शब्दों में रेखांकित किया है। आपके सारे शब्द हो सकता है निमित्त मैं हूं, लेकिन उसके हकदार हजारों साल की मेरी विरासत और 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ और उनका परिश्रम, यही उसका सच्चा हकदार है। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की पल है और जिन शब्द का प्रयोग किया जिससे भारत के लोग भी बहुत परिचित हैं, दोस्तलिक, हमारे यहां भी शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो दिन में 100 बार दोस्त शब्द न बोलता हो, और उस दोस्तलिक की सच्ची पहचान आज आपने प्रकट की है। दोस्तलिक यानी मित्रता, इस शब्द में ही भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों के केंद्र में जो भावना है, उस भावना का बहुत ही उत्तम तरीके से प्रकटीकरण हो रहा है। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और मैं सभी भारतवासियों की तरफ से उज्बेकिस्तान के लोगों का, यहां की सरकार का और मेरे मित्र आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सर्वोच्च सम्मान को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं और दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता और हमारी साझा विरासत को मैं नम्रतापूर्वक समर्पित करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के प्रति आपकी दोस्ती से हमारे संबंध निरंतर मजबूत होते चले गए हैं। हर समय वो नई ऊंचाइयों की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ते जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप आज हमारे संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नया स्तर दिया गया है।

एक्सेलेंसी, अवार्ड से गौरव तो प्राप्त होता ही है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं कि अवार्ड अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के आता है। और आज जब मैं इस ऑर्डर अवार्ड को स्वीकार कर रहा हूं, तब मैं उस जिम्मेवारी का एहसास करता हूं। और मैं आज उज्बेकिस्तान की इस ऐतिहासिक भूमि से उज्बेकिस्तान के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा, ये दोस्ती पूरी तरह से निभा के रहेगा। एक्सेलेंसी, हम दोनों देश साथ मिलकर के पूरे समर्पण भाव से ग्लोबल साउथ की एक संयुक्त आवाज बनेंगे, ग्लोबल साउथ के कल्याण के लिए अपने प्रयासों में हम कोई कमी नहीं रखेंगे और पूरी मानवता के कल्याण के मिशन को भी हम भली भांति निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। पाशिवा।

0: सपोर्ट हिम। बट देखिए, ये फ्रेंकली मैं आपको बोलूं, और मेरी इसके बारे में खारगे जी से बात हुई, ये खारगे जी की इशू नहीं है, ये हिंदुस्तान का हर दलित व्यक्ति, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक की इशू है।
1: कभी पैट्रियार्की को उठाना है, यानी कभी जेंडर का मुद्दा उठाना है, कभी क्षेत्र का मुद्दा उठाना है, कभी प्रांत का मुद्दा उठाना है, कभी भाषा का मुद्दा उठाना है, कभी जात का मुद्दा उठाना है, कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है। हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है, और पीछे से मैकाले, मार्क्स और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
2: देखिए, मैं आपको इसका, ये जब खड़गे जी ने राज्यसभा में मामला उठाया, हमारे उस समय नेता सदन जेपी नड्डा जी वहीं बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा, उनका बयान भी तो सुन लो, कि हम इस किसी भी इस तरह की कोई घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, साफ साफ कहा उन्होंने।
3: वो झूठ बोलने में माहिर हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, सबसे अधिक दलितों का सम्मान किया है, संवैधानिक आरक्षण कमीशन दिया है, आज उनके विकास की नई नई योजनाएं हैं, आज दलित लोग स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं, और खड़गे साहब झूठ बोलते हैं।
4: असत्य और मिथ्या बातें करना बंद कर दीजिए। जिस जो आप वहाँ शुद्धिकरण का जिक्र कर रहे हैं, वैसा शुद्धिकरण वहाँ पर किसी भी दलित के आने के कारण नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वहाँ पे हल्द्वानी के दलित समुदाय के लोग, वाल्मीकि समुदाय के लोग साफ खुद कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ। पर राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं कि ये उनको पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए। राहुल गांधी जी, आपकी मिथ्या, भ्रामक और असत्य बातों पर देश का कोई समुदाय विश्वास नहीं करता है।
5: राहुल गांधी जी ने पहले बोला कि भाई ये हुआ है, 20 दिन बाद उनको स्मरण आया, तब उन्होंने FIR करवाया नहीं, और आज ये ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का जो चेहरा है वो दलित विरोधी चेहरा है, नव सामंती चेहरा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा, आज वो खड़गे जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। खड़गे जी नामांकन केंद्र के कमरे के बाहर रहेंगे। वी नारायण स्वामी पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री ये इस प्रकार से चप्पल उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसा मानसिकता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के नेता युवराज श्रीमान राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये दलित समाज, दलित सम्मान की बात आपको सिर्फ राजनीति के लिए याद आती है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए याद आती है?
6: दिक्कत क्या आप लोगों को, सबसे बड़ी बात क्या लगी, क्या ऑब्जेक्शन आपको लगा कि ये ऑब्जेक्शनेबल है ये चीज?
7: देखिए, ऑब्जेक्शनेबल उसके बाद से जो कुछ भी आया, देखिए क्यों हम उस स्थान में गए, क्योंकि उस कार्यक्रम के होते होते अनेकों वीडियोस ऐसी आई हैं जहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं। भाई, वो हिंदू कार्यक्रमों को करने के लिए मंदिर प्रांगण है, वहां पे एक किसी प्रकार के युद्ध में जा रहे थे क्या जो वहां पे नारे तकबीर लगा रहे हैं? ये हमारी आपत्ति के विषय हैं, परंतु हमने इनका भी उस प्रकार से वहां विरोध नहीं किया कि कोई मुसलमान आ रहा है या कोई कांग्रेसी नेता आ रहा है, नहीं। वहां पे उपस्थित जो भी व्यक्ति थे, चाहे वो कोई भी नेता हो, ऐसा व्यक्ति जो हिंदू समाज के लोगों को या हिंदू संगठनों का की तुलना जो है वो सांपों से करे, उसको मंच पे स्थान दिया जाए, फिर वो मंच की शुचिता सुनिश्चित नहीं कर रही। कोई भी दल हो, जिसने भी वो कार्यक्रम वहां किया, वो मंच को गंदा ही छोड़ करके वहां से चले गए हैं, और उसकी इन सभी प्रकरणों को ध्यान में देते हुए हमने वो शुद्धि किया है वहां पे।
8: So there's a politics that's happening after Rahul Gandhi's purification remark, and he's also seeking an FIR
9: In fact, now shifting focus, a fresh political flashpoint is now threatening to test the unity of the NDA, and this time the battle is coming from within the NDA. Two union ministers, both allies of the same government, are publicly demanding each other's resignation. At the heart of the confrontation is one of India's most politically sensitive issues, reservation. Union Minister Chirag Paswan has launched a direct attack on fellow union ministers.

0: Minister Jeetan Ram Manjhi after Manjhi's HAM backed the demand for sub-categorization within the Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservation system. Chirag stated that if Manjhi believes there should be a creamy layer or a quota within the existing quota, he should first give up the benefits himself and resign. Jeetan Ram Manjhi has it back at Chirag Paswan. Manjhi says that Chirag should resign first. He accuses Chirag of growing up with a silver spoon. Manjhi backs quota within quota. He stated that the reservation benefits are not reaching all, and he calls sub-categorization a step in the public interest. The row traces back to the Supreme Court's 2024 verdict allowing SCST subclassification. In fact, a fresh plea seeks a creamy layer for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, but the centre has opposed it, saying that the principle applies only to OBCs.
1: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा. तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में. माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें. पर ये करके समाज में जिस तरीके से बंटवारा किया जाएगा और फिर जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, फिर तो ये उदाहरण देने के मायने ही नहीं है ना.
2: जिसके पैर में न फटे भी आई वो जाने क्या पीर पर आई. तो चिराग जी सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको क्या पता है कि नीचे झोपड़ी में रहने वाले, ताड़ के खगड़ा में रहने वाले, गंदे बस्ती में रहने वाले, भूखे रहने वाले, नंगे रहने वाले, उन लोगों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी साक्षरता दर 15% से कम है और उन लोगों की साक्षरता दर 40% से ऊपर है. तो कहा जा सकता है कि कहाँ 7%, कहाँ 8%, कहाँ 10% जिसकी साक्षरता दर है उसको लाभ देने के लिए कोटा में सब कोटा किया जाना सर्वथा उचित है, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है.
0: So it's NDA versus NDA over the reservation row. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
3: You are watching India Today.

0: देखिए, मोहन भागवत जी का बयान अच्छा बयान है, और जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं, और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
1: As far as Mohan Bhagwat's statement is concerned, my view is that whatever he has said must be implemented in the ground level in our country. Then only such a statement can be said to be a positive statement. However, this statement has sent a positive message as far as the Indian community is concerned.

0: loss is perhaps one of the major reasons why people are stressed today. It is perhaps one of the reasons why people are also anxious and depressed in certain cases.
1: Hair loss मतलब उसमें hair fall भी हो सकता है और hair thinning भी हो सकती है. Most cases में जो hair fall होगा वो पूरी तरीके से recoverable होता है. That hair thinning part जो होता है, after some time if you don't get it treated, then it results into a permanent hair loss. आपने देखा होगा लड़कों के बाल चले जाते हैं फ्रंट से, एक यू शेप्ड पैटर्न बन जाता है,
0: मेल पैटर्न बाल्डिंग.
1: एग्जैक्टली, लड़कियां होती हैं जिनकी जो सेंट्रल पार्टिंग होती है इट गेट्स वाइडेंड अप और थिनिंग ऑफ द पोनी टेल, दैट इज द मोर वरिंग साइन.
0: कोई ऐसा टेल टेल साइन है अब मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए?
1: तो जब आप नहाएंगे, जब आप कोम करेंगे, जब आप चंपी करेंगे ऑयल से, यू विल सी हेयर इन योर हैंड.
0: Somebody comes to you with male pattern balding, what is your recommendation to them?
1: Two USFDA approved drugs for pattern baldness is the most essential treatment.
0: But there are some side effects also. The thing with minoxidil that I know is that as long as you're applying it, your hair will go through this hair fall phase, but then they will come back really nicely. But the minute you stop...
1: It's very interesting that in 1970s, when we discovered minoxidil, it was actually used for blood pressure. Doctors started noticing that the hair is increasing.
0: Now, the internet is divided over whether oiling is good for you or whether oiling is bad for you.
1: So, hamari science mein to oil ka koi role hai nahi. To aapka khud oil aata hai. Aap 3-4 din nahi naho, kaise ho jata hai? Oily ho jata hai.
0: Yeah, okay. Yeah. मेथी मिक्स कर दो, रोजमेरी मिक्स कर दो, हिबिस्कस मिक्स कर दो, ये सारी चीजें डालनी चाहिए. और
1: रोजमेरी ऑयल की आपने बात की, तो एक स्टडी है जो कि रोजमेरी ऑयल को सपोर्ट देती है, उसके पीछे रोजमेरी ऑयल की पूरी इतनी बड़ी
0: इंडस्ट्री
1: जो है वो स्टार्ट हो गई है. वैसे भी जो लोग हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी ये सब ट्राई कर चुके होते हैं.
0: दिस इज भूमित, हु सेज द शैम्पूइंग योर हेयर फ्रीक्वेंटली कॉज हेयर फॉल. इफ यू आर रेकमेंडिंग अ शैम्पू टू समवन, what do you look for in the ingredient list?
1: People make a lot of mistake in that. People just see the sulfate free ad and they will buy the sulfate free shampoo, and then they will come to me for dandruff, and that is why my dandruff practice is increasing day by day, because everybody is selling sulfate free shampoos.
0: Everybody I know these days has a hair color on. What is the thing that should not be in your hair color?
1: Definitely, this is a very important question, I would say, in especially in Indian context, because hame apna color hair black acha lagta hai. हम लोग वाइट हेयर के साथ नहीं रह सकते. अभी जो रेगुलेशंस है, दैट इज बैंड अमोनिया कम्प्लीटली, बट देयर इज अनदर मॉलिक्यूल इन द कलर्स, दैट इज.
0: हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट. आई एम सोनल मेरोत्रा कपूर एंड वेलकम टू आवर न्यू स्टूडियो. एंड यस, वी लिसन टू ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल योर फीडबैक, एंड यू गाइस सेड व्हाट इज दिस रेड बैकग्राउंड, तो हमने वो चेंज कर दिया. हम आपके लिए एक नया स्टूडियो लेकर आए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ, एंड ऑन अ टॉपिक विच इज अगेन ऑन पॉपुलर डिमांड, एवरीथिंग टू डू विद योर क्राउनिंग ग्लोरी. आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर. से हेलो टू डॉक्टर अंकुर सरीन. हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: वेरी वेल. सो व्हेन इट कम्स टू हेयर, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट, बट लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू दिस. Hair loss is perhaps one of the major reasons why people are stressed today. It is perhaps one of the reasons why people are also anxious and depressed in certain cases. It is right. A very serious problem. It has repercussions all over. And hair loss can happen because of various reasons. But I want you to address permanent hair loss as one. We understand that if you lose too much weight dramatically, if you're on GLP-1, postpartum, season change, in sub mein, आपके सीजनल हेयर फॉल होता है, बट दैट ऑल दैट हेयर एक्चुअली कम्स बैक.
1: राइट,
0: बट परमानेंट हेयर फॉल आपको हो रहा है, पहले मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे अब जाके एक डर्मेट से, ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा? हाउ टू टेल?
1: ये आपने बहुत अच्छी टर्म यूज की, हेयर लॉस. इट्स एक्चुअली नॉट हेयर फॉल, क्योंकि कुछ लोग हेयर फॉल बोलते हैं. सो हेयर लॉस मतलब उसमें हेयर फॉल भी हो सकता है और हेयर थिनिंग भी हो सकती है. मोस्ट केसेस में जो हेयर फॉल होगा उसको हम साइंटिफिकली टेलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं, वो पूरी तरीके से रिकवरेबल होता है. द अदर वन इज द हेयर थिनिंग पार्ट. दैट हेयर थिनिंग पार्ट जो होता है, आफ्टर सम टाइम इफ यू डोंट गेट इट ट्रीटेड, देन इट रिजल्ट्स इनटू अ परमानेंट हेयर लॉस.
0: ओके.
1: एंड देन देर आर सम अदर मेडिकल कंडीशंस जो कि इतनी कॉमन नहीं होती, बट दे कैन ऑल्सो कॉज हेयर लॉस, परमानेंट हेयर लॉस. इनको हम स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं, यानी कि स्कारिंग हेयर लॉस. तो जो मोस्ट कॉमन रहता है वो हेयर थिनिंग रहता है, एंड द हेयर लॉस ड्यू टू द हेयर थिनिंग, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं. आपने देखा होगा लड़कों के बाल चले जाते हैं फ्रंट से, एक यू शेप्ड पैटर्न बन जाता है,
0: मेल
1: पैटर्न बॉन्डनेस एग्जैक्टली. या फिर लड़कियां होती हैं जिनकी जो सेंट्रल पार्टिंग होती है इट गेट्स वाइडेंड अप, और गर्ल्स विल से लिटिल बिट यू नो रिडक्शन ऑफ हेयर फ्रॉम दिस पार्ट, और थिनिंग ऑफ द पोनी टेल. दैट इज द मोर वरिंग साइन. अगर हेयर फॉल हो रहा है वो इतना वरिंग नहीं है, बिकॉज दैट इज इजिली रिकवरेबल. बट वेन द थिनिंग स्टार्ट्स देन यू नो दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ परमानेंट हेयर लॉस.
0: ओके, बट फर्क कैसे समझ में आएगा इसमें? एंड क्या दोनों केसेस में बाल रूट से जा रहा है, और इज इट अ केस ऑफ हेयर डैमेज ऑल्सो विच इज वाई थिनिंग इज हैपनिंग?
1: सो हेयर थिनिंग इज मोस्टली ड्यू टू अ हॉर्मोन इन यू. And that hormone is called DHT, dihydrotestosterone, which is more in men because it is made from testosterone, which is in your blood. And when it reaches the hair follicle, there it meets an enzyme called 5-alpha reductase that converts it into dihydrotestosterone. And this dihydrotestosterone is responsible to shorten the growth phase of the hair, which is called the anagen phase. Science में से anagen phase बोलते हैं. जब हमारा growth phase छोटा हो जाएगा तो बाल पतला हो जाएगा. तो जैसे आप सोते हो उठते हो वैसे आपका hair follicle भी सोता है उठता है. तो जब उठने का time है उसका तो उसको anagen phase बोलते हैं. anagen मतलब growth phase, मतलब वो active है, वो grow कर रहा है, metabolically thick हो रहा है. That is when we want, that is what we want. We want all our hair to be in the anagen phase. But एक नेचुरल चीज है तो नेचुरल चीज को रेस्ट तो चाहिए होगा, थक जाएगा तो हेयर फॉलिकल को रेस्ट चाहिए. तब जो जब उसकी रात हो जाती है तो उसे बोलते हैं टेलोजन फेज. तो टेलोजन फेज इज द रेस्टिंग फेज, और उसके बीच में एक फेज आता है जिसको कैटोजन फेज बोलते हैं. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा होता है वो. टेलोजन फेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, और इसमें क्या होता है कि बाल बस रेस्टिंगली आपके स्कैल्प पे पड़े होते हैं. इजिली आप उसको खींचोगे तो वो बाहर आ जाएंगे. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 90% ऑफ द हेयर आर इन द growth phase and 10% are in the resting phase. When this ratio changes 60-40 ho gaya, 50-50 ho gaya, so resting phase ke baal badh jayenge. To jab aap nahayenge, jab aap comb karenge, jab aap champi karenge oil se, you will see hair in your hand. So then we say that the patient is having telogen effluvium, ya usse hair fall ho raha hai. Now this is easier to recover, but the other one that I said where there's thinning of the hair shaft, जिसमें आपका हेयर फॉलिकल का साइज धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ परमानेंट हेयर लॉस.
0: कोई ऐसा टेलटेल साइन है कि अब हेयर थिनिंग के फेज में मैं आ गई हूं, अब मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए?
1: फॉर गर्ल्स अ लॉट ऑफ देम नोटिस वाइडनिंग ऑफ द पार्टिश. उससे भी पहले आप पता कर सकते हो बाय सीइंग हाउ योर पेरेंट्स आर, बिकॉज जेनेटिक्स तो वहीं से आना है. तो अगर आपके पेरेंट्स को, फादर को फ्रंटल बॉल्डिंग है, क्राउन एरिया बॉल्डिंग है, आपकी मदर की सेंट्रल पार्टिंग वाइडेंड है, सो यू नो दैट यू आर एट अ हायर रिस्क देन द जनरल पॉपुलेशन फॉर दिस काइंड ऑफ हेयर थिनिंग. सो यू कैन प्रीएम्प्टिवली टेक सम स्टेप्स. घबराने की भी जरूरत नहीं है. लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं ऑलरेडी, हेयर को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं लोग. बट दिस इज वन वे दैट यू कैन जज. द सेकेंड इज लाइक आई सेड, पोनी टेल थिनिंग. पेशेंट विल कम एंड से डॉक पोनी टेल अब उतनी रही नहीं, हेयर की लेंथ अब उतनी नहीं ग्रो हो रही जितनी पहले हो रही थी, बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द ग्रोथ फेज ऑफ द हेयर, जिसको एनेजन फेज बोलते हैं, विच कैन बी फ्रॉम 2 years to 6 years. अब आपके बाल यहां तक है. अब किसी के हो सकता है आपका ग्रोथ फेज 4 years का हो, अगर किसी का 6 years का जो मैक्सिमम होता है यूजुअली, उनके में भी नीज तक बाल आ जाएंगे, ठीक है. और जिसका 2 years होगा उसके इससे आगे भी बाल नहीं
0: तो
1: बढ़ेंगे.
0: क्या डिफाइन करेगा कि मेरे हेयर का?
1: दिस इज जेनेटिक्स,
0: न्यूट्रिशन.
1: या बट सी, जेनेटिक्स हैज द मेजर रोल. यू कैन नॉट चेंज जेनेटिक्स बाय चेंजिंग योर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, राइट? बट गुड जेनेटिक्स एंड बैड लाइफस्टाइल कैन बी स्टिल बैड हेयर.
0: या,
1: सो इट्स लाइक दैट.
0: सो व्हेन पीपल से दे आर ब्लेस्ड विद गुड हेयर, दे एक्चुअली मीन दैट, राइट?
1: डेफिनेटली.
0: तो ये जितनी इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियोस बनते हैं कि मैंने ये कॉन्कॉक्शन लगाया रोजमेरी ऑयल का एंड इससे मेरे बाल 6 इंच से 12 इंच हो गए हैं. All of that is not true. They probably already had good genes,
1: yes,
0: and they've just done the right thing by right. supporting that.
1: Right. Yeah. So there is genetics and there's epigenetics, right? So how the environment is playing a role in supporting or not supporting that genetics, definitely that is important. And rosemary oil की आपने बात की तो एक study है जो कि rosemary oil को support देती है for the hair growth. और उसके पीछे रोजमेरी ऑयल की पूरी या रोजमेरी वाटर की पूरी इतनी बड़ी
0: इंडस्ट्री
1: जो है वो स्टार्ट हो गई है.
0: ओके सो हमें ये एस्टैब्लिश हो गया कि लार्जली आपके बाल कैसे हैं, कब झड़ेंगे, किस पैटर्न में झड़ेंगे, ये आपकी जीन्स डिफाइन करते हैं. अ लॉट ऑफ इट इज नॉट इन योर हैंड.
1: यस.
0: अ गुड लाइफस्टाइल, गुड प्रोटीन इनटेक, गुड स्ट्रेस लेवल्स कैन रियली एम्पलीफाई इट और नॉट, बट वो रेंज वही रहेगी. तो अगर अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है और मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, आप सबसे पहले क्या करवाएंगे? आप मुझे टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, आप मुझे ट्रीटमेंट्स बताएंगे, आप मुझे अपना डाइट ठीक करने को बोलेंगे, आप क्या करेंगे?
1: सो फर्स्ट थिंग इज द हिस्ट्री. तो आप मेरे पास आते हैं तो आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, हाउ यू फील अबाउट इट, सिंस व्हेन इट इज हैपनिंग, दैट गिव्स अस अ गुड आइडिया. देन द सेकेंड थिंग इज अवर एग्जामिनेशन. सो वी हैव टू एग्जामिन द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट हाउ द हेयर इज. वी कॉमनली डू अ हेयर पुल टेस्ट, मैं काफी पसंद करता हूँ उसे करना, जिसमें कि हम अराउंड अंदाजे से 60 हेयर स्ट्रैंड्स को लेते और बेस से ऊपर तक उसको ट्रैक्शन देते और देखते कितने बाल हमारे हाथ में आ गए. तो बहुत लोगों के उसी से पता लग जाता है कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि अगर 5 या 5 से ज्यादा बाल उसमें आपके हाथ में आते हैं, सो देन यू नो दैट
0: पेनफुल.
1: नो नो, इट्स नॉट दैट पेनफुल, या बट इट्स यू कैन से मे बी 3 or 4 out of 10, yeah, little bit.
0: So 60 आपने pull करे, उसमें से अगर 4 or 5 आ रहे हैं तो that's normal.
1: Yes, yes. हाँ, अगर उससे 2-3 आ रहे हैं तो normal है, but अगर 2-3 से ज़्यादा आ रहे हैं, जो बहुत commonly आते, so then it is not normal. And also we go by what the patient is saying. If the patient is saying that the hair fall is significantly increased than what it was before, then we like to proceed even if the hair pull test is negative, right? After that, we commonly, we can narrow down the diagnosis once we have taken the history and physical examination. The next step is to recommend some tests, some normal blood tests that can be done. And we can check the nutrition profile. We can also, these days I've also started to tell patients that put your diet on these, you know, calculators that are available on the internet.
0: Yeah.
1: Because that gives them an idea of how much protein they're having.
0: Protein is like everything now.
1: Right.
0: Even for your hair.
1: Right. Absolutely. Or 1 gram per kg is a lot of India is vegetarian and a lot of them are not having that much amount of protein, right? So that is very important. So we get an idea from this, like what is going on.
0: Kuch tests bata sakte hain aap, males and females,
1: tests, right?
0: Blood tests that they should get done if they want to understand the source of their hair loss.
1: So if you want to go to a dermatologist, so if you want to get a test beforehand done, you can do a CBC. You can do a vitamin D. CBC will tell you the hemoglobin levels and it will give you a picture of...
0: iron deficiency will also...
1: Iron deficiency will be caught there. It will give you the size of the red blood cells. So if the PCV is down, you know that there is iron deficiency. If the nucleus is of the red blood cells is bigger, then the doctor will know it is vitamin B12 deficiency. So a good idea one can make out from the CBC. Then we have the vitamin D, okay, which is again very low in a lot of patients. So we need to supplement that. Then vitamin B12. Then there's TSH thyroid. अगर आपको weakness feel होती है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो आपको thyroid का test जरूर कराना चाहिए. और ferritin levels, that is the iron stores in your body, वो भी बहुत important होते हैं. और कई बार normal होते हैं, हम उसको चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा upper end पे रखें for a better performance. CBC, vitamin D, B12, ferritin and TSH. These are the 5 tests that are commonly done. इसके अलावा अगर फिर भी hair fall नहीं रुक रहा है, then we go into the deeper testing with a trace element such as zinc, selenium, manganese, chromium, जो कि हमें हमारी body को trace amounts में चाहिए होते हैं. और कई बार ये भी deficient आ जाते हैं. मैग्नीशियम बहुत लोगों में deficient होता है, zinc बहुत लोगों में deficient होता है. तो इनको भी हम supplement करते हैं और उससे patient में improvement आने लग जाती है. Then there are some advanced tests जैसे कि scalp biopsy. अगर हमें doubt as a doctor, we are not able to diagnose with just these steps, then we can send a small piece of the skin of the scalp to a dermatopathologist, the one who looks under the microscope and tells us that this could be ABC. And then we proceed according. So these are the most common tests that are done. Apart from that, for research purposes, we can check the diameter of the hair. Agar hair ka diameter kam ho raha hai, we take 10 hair, we see them under the microscope. Agar hame lag raha hai ki there's variation in the diameter of the hair, so that is a sign of the hair thinning. Because har hair ka diameter alag alag aa raha hai. So these are the tests that we can do.
0: Yeah. So for me, the takeaway from this is that if you're iron deficient, if you're B12 deficient, if you're vitamin D deficient, or if you're not taking the right amount of protein, you will have hair fall.
1: Definitely.
0: And a lot of the fix actually lies in what you're eating.
1: Yes.
0: Okay. And
1: yes.
0: what the fuel you're giving to
1: exactly,
0: your body. And that's one.
1: Exactly.
0: A lot of this hair fall that has now happened, if it is, say, genetically inclined, it will not regrow, right? So in order to grow that hair again, what are the kind of therapies which are out there in the market? Some very popular ones we see on Instagram as well, and there's a lot of misinformation. But I'm sure not like a right therapy needs the right patient. So how do you make that match? So say somebody comes to you with male pattern balding, what is your recommendation to them?
1: Yeah. So if somebody has male pattern balding, first thing first is they have to do something at their home every day to fight the effect of that DHT. Okay, so for them, DHT blockers is the most essential treatment. Okay, so DHT blockers are two types. One is fenasterate and deuterostride. Then there are some injectable options available like bicalutamide, okay, which we can put in the scalp. Okay, that is mostly done for females. So fenasterate and deuterostride patients can take at home. They will block the DHT and they have good effect. They are also US FDA approved for
0: DHT is basically a kind of...
1: It's a hormone.
0: Yeah.
1: It's a hormone. It's a more potent form of testosterone that is responsible for shortening of the growth phase of the hair.
0: But there are some side effects also.
1: Yes. So finasteride and deuterostride, because they reduce the DHT. So theoretically, aapke body mein female hormones ka effect zyada badh sakta hai for a male. So you can get breast enlargement. Okay. You can get loss of libido, that is reduced desire to have sex. Okay. Now, the breast enlargement is very rare, super rare. Like in 5 years of my practice, I've had one, that is of my clinic practice, one patient of
0: breast enlargement.
1: Breast enlargement. Loss of libido, that is reduced desire to have sex, that is much more common. Also, I think it gets into patients' head, but the biggest meta-analysis, that is, agar studies, agar 50 studies, un sab ka jo ek meta-analysis karte, sari studies ko jod kar kya data nikla, usme ye pata chala hai ki 4% logo ko ye hota hai. To iske bhi chances kam hai kafi. But still, because people read it and you know, it is such a psychological thing, having the sexual drive, or maybe if they're having something else, they might blame it on the drug. So the overall percentage, I would say, in my practice would go up to 10%, 15%. Patients might say that, doc, I don't want to take it because I'm having sexual side effects.
0: Oh, I see. So, and about women?
1: So for women, the sexual side effects could be there. That they also might feel a reduced desire to have sex. But other side effects are not very concerning for women. If you have a history of breast cancer, a strong breast cancer in the family, like your first degree relative, then we avoid giving DHT blockers, or we can give it and, you know, we can ask the patient to be a bit, you know, get her breast exam.

हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: On that note, viewers, our first breaking news at the top of the segment is coming in from Lucknow. It's a brutal murder of a Hindu activist that we are learning of. The Hindu activist Dhirendra Singh has been gunned down in Lucknow. Bullet-ridden body found in a canal in Dubagga area. Body dumped in the canal by suspected killers. Dhirendra Singh killed inside his Fortuner SUV. Lucknow police, in fact, suspect driver's role in the murder. Lucknow murder over an alleged land dispute is what we are learning so far in the investigation that's been launched and the preliminary details coming in. Police have said driver colluded with the victim's rivals. This is all the details we have for you. And Santosh Sharma joins us on the broadcast with more details on the same. Santosh, a very good evening to you. सबसे पहले ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो ड्राइवर थे वो जो अटैकर्स थे उनके साथ मिलकर एक प्लॉट बनाया गया था और आखिरी में इनकी जो बॉडी है उसको एक कनाल में डंप कर दिया गया था. कब ये हादसा हुआ था, कब उनका बॉडी पाया गया और प्रोब में और क्या रिवील हुआ है, ये सारी जानकारी दीजिए.
1: ये हिंदूवादी नेता है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है. दो दिन से लापता थे. इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी लावारिस हालत में सुशांतपुर सिटी थाना क्षेत्र में मिलती है. पारिवारिक जनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, तलाश कर रही थी और अचानक दो दिन के बाद पता चलता है दुबग्गा जो पूरा घटना सुशांतपुर सिटी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है वहां पर लाश मिलती है कैनाल में, एक नहर में, दुबग्गा के नहर में लाश मिलती है. और उसके बाद जो फॉर्च्यूनर जो गाड़ी थी, कहा जा रहा है कि उसी के अंदर हत्या करने के बाद बदमाशों ने उसकी लाश फेंक दी थी. अब जो इनका ड्राइवर था और जो तमाम जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है कि ड्राइवर एमएससी सस्पेक्टेड है कि उसने जो लोग थे उनके साथ मिलकर के हत्या को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस इंटरोगेट कर रही है, उसको कस्टडी में लिया गया है. जो पुलिस की टीमें हैं, फॉरेंसिक की टीमें हैं, वो मौके पर है. ये जरूर है कि दो दिनों से धीरेन्द्र प्रताप सिंह घर नहीं पहुंचे थे, लापता थे, पीजीआई इलाके में रहते थे. उनकी लास्ट लोकेशन सुशांतपुर सिटी पुलिस स्टेशन एरिया में थी और लेकिन इनकी जो बॉडी मिली है वो थर्ड पुलिस स्टेशन एरिया है और वो दुबग्गा पुलिस स्टेशन है, करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां से. वहां पर लाश मिली. अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है. पुलिस का प्राइमरी कहना है कि लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा मामला हो सकता है जिस पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है.
0: जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए. व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग सो फार अबाउट दिस केस, बट देयर इज सम मोर न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ. लेट्स क्विकली टेक अ लुक. It is bulldozer action against lawyers' chambers in Lucknow. Lucknow Municipal Corporation team takes bulldozer action after no relief is granted by the High Court. Bulldozer action against illegal lawyers' chambers built through encroachment. Bulldozer action against the illegal lawyers' chambers followed an order from the Lucknow bench of the Allahabad High Court itself. Electricity department team has also arrived at the very location, is what we're given to understand. A little while ago, this entire case took place. Power supply was disconnected from this very area as well. Now, before we go back to Santosh and get some more clarity and details on this, let's quickly take a look at the ground report that's been brought to us by him first.
2: Court in Lucknow bench ke aadesh par jo Lucknow court ke aas pass vakilon ke dwara nale, sarkari zameen, raaste par atikraman kar चैम्बर बनाए गए थे उनको गिराने का आदेश हुआ वकीलों की तरफ से. इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब लखनऊ नगर निगम का बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है. लखनऊ नगर निगम की तरफ से नोटिस पहले ही दिया जा चुका था. 29 अगस्त तक की तारीख दी गई थी कि 29 अगस्त तक अगर वकील अपना जो अतिक्रमण किया हुआ चैम्बर बनाया है उसको नहीं हटाते हैं तो 30 अगस्त को प्रशासन इसको गिरा देगा और आज वही एक्शन की शुरुआत हुई है.
0: Bring back Santosh into the discussion here. Santosh, ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये जो बुलडोजर एक्शन ऑर्डर किया गया है, इसके बारे में आप वहां थे, एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए. बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी वहां से, अभी बिजली भी वहां से डिस्कनेक्ट किया गया है, इन सब चीजों के बारे में प्लीज बताइए.
1: देखिए, ये पूरे 4 महीने पुराने से मामला चल रहा है. मई के महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ जहां पर हाईकोर्ट के आदेश पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर 72 चैम्बर्स इलीगली आइडेंटिफाई हुए थे जिन पर बुलडोजर एक्शन हुआ. लेकिन उसके बाद 12 जो पुलिस ने रिपोर्ट दी कि 12 इलीगल चैम्बर्स को ही बुलडोज किया गया और उसके बाद वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट में जो मामला पड़ा हुआ है उस पर उसका फैसला आने का इंतजार करिए। और उसी के बाद लखनऊ नगर निगम ने इनको नोटिस दिया हुआ है, जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड जो चैम्बर्स हैं, चाहे वो फुटपाथ हो, चाहे वो नाले हो, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड्स हो, उन पर जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड जो चैम्बर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उन पर नोटिस दिया गया। और कल तक तो उनका नोटिस दिया देने का टाइम था, कल तक उनको हटा लेना था लेकिन नहीं हटाया। और आज बुलडोजर एक्शन का नोटिस में जिक्र था और उसी के तहत ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब वकीलों का कहना है कि 72 इलीगल चैम्बर्स आइडेंटिफाई किए थे, 12 पहले गिराए जा चुके हैं, 18 ही पुलिस गिराए। इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्यादा चैम्बर्स ना गिराए जाए, इन मांगों को लेकर वकील कह रहे हैं। लेकिन अभी बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है देर शाम में संडे को। जी
0: जी संतोष, हमें सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट दिस वेरी केस एज वेल, एंड वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ दिस अनफोल्ड्स फर्दर, बट फॉर नाउ वी शिफ्टिंग आवर फोकस। Our next story takes us to Chandigarh. Almost 2 months after being abducted from Chandigarh, Punjabi social media influencer Manjeet Kaur dies during a treatment at the PGI Chandigarh. What we're learning about, in fact, the details we already knew about, was the fact that the social media influencer was allegedly kidnapped from Chandigarh Sector 34 area on July 3rd and later taken on to some secluded place in Morinda area. And there she was allegedly beaten up and later tied up and burnt. Manjeet Kaur died in the PGI August 26th while undergoing burn injury treatments. This is what we are now learning about the whole case. Now, talking to India Today, DSP of the Chandigarh Police, Gurjeet Kaur, has said that a case of abduction and murder has been registered. A case has been registered against Rinku, Shubhi and Pinda. We received the complaint from Kanta Devi, mother of the deceased, added the police, with regards to the information they have so far about the very case, that the complaint that they have registered. The police is probing all possible angles as to why was she kidnapped and then later murdered this brutally. The police have said that they're examining the CCTV footages as well at this given point to trace the entirety of what happened in the sequence of events. But the unfortunate news is that the social media influencer Manjeet Kaur is no more.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: Viewers, welcome back. You're watching India Today, and right at the top of this segment this hour, we bring to you breaking news coming in from Nepal. At this given point, the death toll has yet again mounted, and the numbers stand at 781 as we speak. The number of missing have crossed 2,500. Now, 9,535 people have been rescued so far, is what we're given to understand. 267 have been injured in the calamity, and the death toll, however, has been mounting with each passing hour. It stands at 781 right now. The rescue operations, of course, have been continuing to race against time, working round the clock at a war footing level to bring out any and every stranded person out there, as this entire region came to face one of its worst nightmares in the forms of a natural disaster that hit it. Basically, in fact, from 2015, this was perhaps the most devastating and catastrophic calamity that's come about to hit this very region. The flash floods that were triggered on 4 days ago at this given point. And yes, Wednesday is when it came about at this given point. This is the Bhottekoshi River that we are showing you and the water levels that surge there. And the biggest concern for this region still remains to be that the threat is not completely over. The river still is swelling, and there are several warnings that there might be another flood given the glacial outburst at the very top in the higher peaks in the foothills of the Himalayas in this region. 4 days after a devastating flood that wrecked Nepal, rescue efforts continue. However, death toll has been increasing with each passing day. Thousands still continue to remain missing. Multiple rivers remain on the surge, and Nepal continues to be on the edge. On that note, take a look at the special ground report that we bring to you.
1: Days after a catastrophic flash flood ravaged Nepal, rescue and relief operations continue even as a fresh flood threat looms large. There was a sudden surge in Bhottekoshi's water level in Rasuwa, the river that inflicted misery in the region. The river, which flows south from the Himalayan border region, is surging again, carrying massive volumes of water. Authorities have issued a fresh alert along the Trishuli River corridor, urging people to move to safer ground.
2: It's not over yet in Nepal, as we see the first wave bringing this magnitude of devastation. Now the level of Bhottekoshi River is yet again on rise. The administration from the upstream has issued a warning to the people near the embankment area to go to the safer side. While we see the search, rescue and road connectivity exercise underway by the different agencies, the threat that remains because of the Bhottekoshi River. Look at this. Literally scary look. And since there have been water released from the upstream, the level of Bhottekoshi River yet again on rise.
1: The devastation of the flash flood is now becoming clearer. Death toll has now crossed 700 in Nepal, and around 2,500 remain missing.
3: Behind me, you can see this is the Naraini River. In fact, this is one of the two rivers in which most of the bodies, got swept away on that day when this incident took place on the Tibet-Nepal border. And hundreds of bodies got swept away in the Trishuli River and later in the Naraini River.
1: Rescue workers have resumed their efforts in the hydropower tunnels in Trishuli region, where hundreds of workers remain stranded. India has stepped up to help its neighbour. Multiple Indian flights have touched down in Kathmandu, bringing tunnelling experts and forensic experts on the ground.
4: Prime Minister Modi called our Prime Minister Balendra Shah on the first day of the disaster. Next day, I spoke with my counterpart, His Excellency Jaishankar. I have expressed our deepest gratitude to Government of India for all the support they have provided to us. We are in active collaboration with Government of India to share our emerging need. As we understand from the ground perspective, we are communicating our needs.
1: But with another flood threat looming large, the Himalayan nation remains on the edge. With Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
0: Rescue teams are now racing against time and have been to find those still missing. They're still pulling out bodies even as families across India wait for news of those missing after the flash floods. The death toll from Nepal has crossed 700. Families in India agonizingly and anxiously wait with bated breath for any even minuscule news of their loved ones who have gone missing since the catastrophe. Take a look at this news report.
5: Nature's fury has completely ravaged Nepal. Flash floods have torn through Nepal. Entire stretches of the Himalayan foothills have been wiped out. The death toll from the Nepal flash floods have crossed 700 as more bodies are recovered in ongoing search and rescue operations.
2: This is the market where more than 40 people were recovered along with the flow of Bhadkoshi, and these buildings, the search and rescue teams are looking for every possible survivor or even the bodies if they are stuck in these buildings. So the search and rescue parties, through the penetrating the walls of these buildings, will be going every block, every building. Massive devastation has triggered in the area of Nuwakoti and here in Trishuli area. From Trishuli to Dhunge, the whole of this village has now totally been flattened and covered under thick layer of debris.
5: Meanwhile, MEA has been able to re-establish contact with 50 stranded Indian nationals and rescued over 105 people so far. Five members of a family from Raxaul in Bihar remain untraced. Relatives say that they have no contact since the floods.
6: इस घर से टोटल कितने लोग बाहर कमाने गए थे?
7: आठ लोग गए हुए थे.
6: आठ आदमी गए थे. तो कितने लोग अभी सुरक्षित हैं और कितने की लापता होने की खबर है?
7: लापता उसमें तो पांच है और बचे हुए तीन बचा हुआ है, जो हमारा चाचा बचा हुआ है और दो भाई बचा हुआ है. चाचा का बुआ दो छोड़ जाने सबसे बचा हुआ है.
5: टू वर्कर्स फ्रॉम हरदोई इन उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो मिसिंग. देयर फैमिलीज हैव बीन अनएबल टू कॉन्टेक्ट देम सिंस ऑगस्ट 25.
8: सर हमारे परिवार से तीन लोग थे वहाँ काम कर रहे थे. एक हमारे भाई थे, बड़े भाई विंदर सिंह, और एक हमारे चीचा जी थे शमशेर सिंह, एक हमारे भतीजे थे रशपाल सिंह. सर जानकारी हमें कोई नहीं मिली अभी तक. बस यही बता रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिली.
9: जब ये हादसा हुआ तब से कोई उनकी कोई खबर आप लोगों को मिली? कोई बात हुई?
10: कोई बात नहीं हुई, कोई खबर नहीं मिली.
9: कहाँ वहाँ कहाँ काम कर रहे थे?
10: वहाँ नेपाल में थे, काठमांडू से आगे पड़ता है 70 किलोमीटर.
5: इन पंजाब 42-year-old शमशेर सिंह फ्रॉम तरन तारन हैज ऑल्सो बीन मिसिंग सिंस फ्लड डिस्ट्रॉयड नेपाल. An Infosys Public Services CEO, Lax Gopi Sethi, who was in Nepal in a personal capacity, is also currently not reachable. Rescue operations continue across the flood-hit Himalayan belt as families of the missing wait for any word of their loved ones. Vish Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
0: Shifting focus to another big story that we've been tracking through the day. It is day two of Prime Minister Narendra Modi's state visit to Uzbekistan. The day began with the Prime Minister's yoga diplomacy on full display in Tashkent. Prime Minister Modi took part in a community yoga event and again highlighted India's imprint on yoga globally. Prime Minister Modi held delegation-level talks next with President Shavkat Mirziyoyev. During the talks, India and Uzbekistan have signed several key MOUs, including a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will establish a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. During the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajali Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan.
11: ये बुक देखी आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया, ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
12: इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई फील मी हेल्थी एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम आल्सो वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्रीज बिकॉज़ वी हैव सो मेनी इवेंट्स आल्सो इन दिस ईयर्स इंटरनेशनल योगा डे एंड इवन टुडे वाज वेरी good and very joyous. Yes, it's a very pleasure to be here, to be invited and to be a part of this event.
13: Really, really very great and experience.
14: Do you think yoga can bring India and Uzbekistan closer?
13: Yes, of course. I think it will be a new level, it will be a new relationship, most closely and most friendship. I am very happy that it's I am very appreciate that it's happened. It was amazing, I think, not just for and people, both country.
15: बहुत अच्छा लगा उनके जो लोगों के साथ मिलने की जो उनकी भावनाएं हर किसी से हाथ मिलाया अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में इतना प्राइम इस लेवल का आदमी एक आम आदमी से मिलता है बहुत अच्छा लगता है इस ग्राउंड टू अर्थ यू नो ऐसा लगता है अपनापन लगता है कि अपने ही बीच के लोग हैं
16: आई एम स्पीचलेस आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग बिकॉज आवर रिस्पेक्टेड मोदी जी Prime Minister, he is just front of me and I was perform. I'm inside very nervous, but when he cheer up and we are, you know, like very motivated.
0: We're taking you next to Lucknow, where there's a case that's come up. It's a brutal murder of a Hindu activist that we were bringing to you news about earlier as well. Now, the activist Dhirendra Singh was gunned down. Bullet-ridden body was found in a canal in Dubagga area. The body dumped in the canal by the suspected killers themselves. Dhirendra Singh was killed inside his Fortuner SUV. And the Lucknow police have suspected that the driver had a role in the murder as well. Now, the Lucknow murder, in fact, took place over an alleged land dispute is what's been given to understand so far. Behind the motive. But again, the probe has just been launched, so it is still being tracked down to understand what exactly motivated the killers to take this extreme step. The cops have come out to say at the same time that the driver colluded with the victim's rivals and it was a land dispute issue over which this murder might have taken place. Now, the body has been recovered. It's a bullet-ridden body that's been recovered. Reports, medical reports are yet to come in with regards to the entire case. We'll take you through a ground report that's been done by our colleague. Take a look as to what are we learning.
17: Dhiren Pratap Singh ko goli mari gayi aur phir uske baad unki laash kareeb 20 kilometer dur shehar se ek sunsan ilake mein fenki gayi. Ye isi sunsan ilake ka fayda uthate hue hatyare the. Unhone Dhiren Pratap Singh ko goli marne ke baad unki hatya karne ke baad unki laash ko yahan par fenk diya aur farar ho gaye. Filhal पुलिस का कहना है कि इस पूरी हत्या के पीछे उन्नाव में एक जमीनी विवाद अभी प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है धीरेन्द्र प्रताप सिंह के ड्राइवर और उसके एक अन्य साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है
18: बॉडी जो है रिकवर कर लिया गया है और जिस गाड़ी में इनकी हत्या जो है वो की गई है वो गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इसमें जो मुख्य संदिग्ध जो दो व्यक्ति हैं जिसमें एक ड्राइवर है और एक अन्य है उनको भी जो है भी पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है अभी तक की विवेचना में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्नाव में एक जमीन है उसी को लेकर के जो है यह विवाद जो है वो हुआ था और इसमें इस तरीके की दुखद घटना जो है वो हुई है इस घटना में जितने भी अन्य लोग शामिल होंगे उन सबके खिलाफ भी कठोरतम प्रभावी कार्रवाई जो है वो की जाएगी
0: As we speak, there is more news that's come into this entire case at this given point. As we told you, it's a Hindu activist who was in fact gunned down. The bullet-ridden body having been found by the canal. Now, this particular person was killed in the Dubagga police station area and he was shot twice. These are the latest information and details we're getting to know about the entire situation. And he was shot once in the head, once in the abdomen. The driver, Ravi, is who misled the family all day with a fabricated story, which is where the police came out to suspect that he has played a crucial role in ensuring the very execution of this planned murder. Now, Ravi kept telling the story that Dhirendra had gone to the Plasio Mall with his friends and said that he would take time instructing them not to inform the family at home. It was not needed. And that is how he kept the family members at bay. And post that, he told the same false story to the police as well, claiming that Dhirendra had gone to the Plasio Mall with friends and hadn't returned since. This is the premise that he set. For more details, we have Santosh Sharma joining us on the broadcast himself. Santosh, iske pehle hum is cheez ke intezar mein the ki aur kya details aata hai inke chot ke bare mein kitni round of goli chalai gayi thi aur ye jo driver ka pura is mudde mein is hadse mein jo inka role hai jo police suspect kar rahi thi ki inhone hi madad ki hai inka hatya karne mein ये अब सामने आ रहा है कि कैसे इन्होंने मदद की है इस पूरे चीज को अंजाम देने में, आप और क्या जानकारी दे सकते हैं?
19: देखिए इस मामले में जो आरोपी ड्राइवर है रवि, उससे पूछताछ की गई तो उसने शुरू से ही परिवार वालों को और पुलिस को गुमराह किया कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह कलासियो मॉल चले गए, अपने दोस्तों के साथ चले गए और वहां से उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा कि घर पे मत बताना मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं। लेकिन पुलिस ने जब कलासियो मॉल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वहां पर ना तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह के एंट्री एग्जिट का कोई जगह थी और ना ही एंट्री एग्जिट का फुटेज था और ना ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह के आने जाने का कोई रास्ता कोई फुटेज मिला, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। उसने जब कॉल डिटेल खंगाली, कॉल डिटेल खंगालने के साथ साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मोबाइल की लोकेशन खंगाली, तब तमाम चीजें ऐसी आई जो पुलिस को शक पैदा कर रही थी और आरोपी ड्राइवर से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी ड्राइवर ने शुरू से गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब जाकर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि आरोपी ड्राइवर रवि ने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर गोली मारी और इस पूरे घटनाक्रम में दो गोली मारी गई धीरेन्द्र प्रताप सिंह को, एक उनके सर में और एक उनके पेट में गोली मारी गई है और उसके बाद उनकी लाश को दुबग्गा इलाके में फेंक दिया गया है। तो ये एक पूरा अभी तक घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में आरोपी ड्राइवर रवि को और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, भी हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है और उसके साथ ही अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जी
0: संतोष, अगर हम बात करें मुद्दे की, जो मोटिव देखा जा रहा है वो मेन यही है, अभी तक पुलिस का जो शक रहा है जिस चीज पे वो है कि जमीनी मामला था जिसके ऊपर एक राइवलरी थी, एक तरीके का झगड़ा था किसी अन्य ग्रुप के साथ जिसके वजह से इनको मार दिया गया, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है?
19: देखिए बिल्कुल, ये जो जानकारी अभी तक शुरुआत में आई कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह का लैंड को लेकर के, कीमती लैंड को लेकर के एक विवाद था और उसके बाद जो लैंड जिन लोगों से लैंड का डिस्प्यूट था जिन लोगों से, उन लोगों ने इस ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया और जिसके बाद इसको पैसों का लालच दिया गया और उसने ये हत्या की है और जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम ये सामने आया है और अब ये लैंड डिस्प्यूट ही था, करोड़ों की लैंड थी जिसके चलते ये हत्या करवाई गई है। जी
0: जी संतोष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well, viewers, that's what we're learning so far. Santosh just took us through the entire sequence of events as to how the police traced those calls and WhatsApp chats and understood the role of the driver and the entire sequence of events that came about. So far, these are the details. Of course, the probe continues into the very matter and we'll keep a very close track of it. A strong message in the Hindu-Muslim unity from RSS Chief Mohan Bhagwat in the New York City has sparked both praise and now a political counter and debate in India. Addressing the Indian diaspora, Bhagwat has said, a true Hindu can never exclude Muslims even in a Hindu Rashtra, stressing that different faiths may follow different paths, but humanity binds them all together. His remarks were welcomed by Muslim voices, including former Babri Masjid litigant Iqbal Ansari himself, even as opposition leaders have come out to question whether the message matches the RSS chief's stance and positions that he takes and expresses in India. Let's take a look at this report to understand the story better.
1: Big message from RSS chief Mohan Bhagwat in New York. At a gathering of Indian diaspora, Mohan Bhagwat made a strong case for unity in diversity and inclusivity, saying that a true Hindu can never exclude

0: Neuralink has shared footage of trial participant Audrey Cruz using its brain-computer interface to create digital art and write her name on a computer without physically moving her hand.
1: भाई इटली से तो इंडिया ही बेटर है
2: भाई एक तो इतनी गर्मी और कहीं भी एसी फैन कुछ भी नहीं है
0: Is India better than Italy? An Italian user named Bini certainly thinks so. During his trip to Italy, he posted a video arguing that India offers better public transport facilities than Italy.
2: It's so disgusting और इतने सारे लोग हम सोरेंटो से नेपल्स जा रहे हैं और ये ट्रेन रुक गई है पिछले एक घंटे से ट्रेन रुकी हुई है और इतने गर्मी में सब लोग फैन लेके बस जमीन पे बैठे हुए हैं
3: मैं स्विगी मार के

0: are watching India Today.
1: Hello and welcome, viewers. You're watching India Today with me, Shriya Kundu. We'll be taking you through all the top stories. But before that, let's quickly first take a look at the headlines at the top of the bulletin. India and Uzbekistan deepen strategic ties, strike long-term uranium deal and set an ambitious target of $5 billion in bilateral trade by 2030. Ministry of External Affairs also confirms UPI rollout in Uzbekistan. Prime Minister Modi conferred Uzbekistan's highest state honour. He has arrived in Kyrgyzstan for the SCO summit.
2: Dono paksh milkar ek business summit ka ayojan karenge, jisme dono desho ke business leaders शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
1: RSS Chief Mohan Bhagwat delivers a strong message on India's pluralistic identity during his New York visit. Says Hindu Rashtra does not mean excluding Muslims and that Hindutva is not about exclusion. Opposition questions. Unity remarks says why not say such things in India?
3: There are many names in many Bharatiya traditions. But it is the truth that connects us all. In spite of our different bodies, different attires, different worships, everything being different.
1: Over 780 dead in Nepal as the country continues to reel under the impact of flash floods. Ministry of External Affairs says 149 Indian nationals rescued so far, such underway for others. Indian tunnel team reaches Nepal, assists Nepal Army in the rescue efforts at the tunnel sites. Hindu activist shot dead inside his SUV in Lucknow. His bullet-ridden body recovered from a canal. A police probe reveals the victim was shot twice. Activist Dhirendra Singh's driver allegedly colluded with the rivals over a land dispute in Unnao and has confessed to the crime now. Kong cries Dalit insult over purification and Havan after Kharge's Haldwani event. Sikhs FIR man behind the purification says the Congress event saw Islamic chants and littering of beer bottles. Complaint filed against Rahul Gandhi in Uttarakhand over alleged casteist remarks amid the ongoing Shuddhikaran Rao.
4: News aisi aayi hai jahan pe Narae Takbir Allahu Akbar ke nare lage hain. भाई वो हिंदू कार्यक्रमों को करने के लिए मंदिर प्रांगण है वहां पे एक किसी प्रकार के युद्ध में जा रहे थे क्या जो वहां पे नारे तकबीर लगा रहे हैं ये हमारी आपत्ति के विषय हैं.
1: Big controversy erupts as comedian Samay Raina and Sharon Varma face severe backlash over another episode of India's Got Late and brutal roast and dark jokes on Bihari migration and Kashmiri Pandit exodus triggers outrage. Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी इसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है. मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे. ब्रदर कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे।
1: Now we'll take you through the list of global honors, and in addition, the one that's seen a recent addition in Uzbekistan itself for the Prime Minister. Now, when we speak of 2026, let's start with the first one in Uzbekistan itself, the Order of Oli Darajili Dostalek that has been bestowed upon him only earlier today. On that note, in 2026 itself, in his last visit to Indonesia, he was bestowed with the Bintang Adipurna. Again, before that, it was Seychelles that he was visiting, where he was honored with the Guardian of the Blue Horizon. Prior to that, Sweden, where he was given the Royal Order of the Polar Star Commander Grand Cross. Previous year, 2025, is when he was visiting Israel, and as the Speaker of the Knesset, he was given a medal for the same. 2023, it was in France when the Grand Cross of the Legion of Honor was bestowed upon him. 2020, before that, was in the United States Legion of Merit that he was awarded with. 2019, in Bahrain, it was King Hamad Order of the Renaissance. 2019, in Russia again, Order of St. Andrew the Apostle. And then in UAE, in the same year, Order of Zayed Award. And then 2016 is when we see, in Saudi Arabia, it's King Abdulaziz Sash. So this was a list of awards that's been bestowed upon him globally so far. Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
5: Namaste.
6: लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ. मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है. बहुत बहुत बधाई. Thank you.
1: And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो, ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया, ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier, and this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, The theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: समय रैना हो या अन्य कोई कलाकार हो, हमने अतीत में भी देखा, वर्तमान में भी देख रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके पब्लिसिटी पाने के लिए ये किसी को टारगेट करते हैं। क्या कारण है आप कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाओगे, बिहारी भाइयों का मजाक उड़ाओगे? ये सोच समझ करके पब्लिसिटी स्टंट है। और ये कहानी का अंत होता है कि माफी मांग करके द एंड, और उसके बीच में इतनी पब्लिसिटी जुटा लेते हैं कि आगे की दुकानदारी इनकी अपने आप चलती हो, फिल्म हो, सीरियल हो, या कोई कॉमेडियन समय रैना जैसा कोई कलाकार हो।
1: नहीं, अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है।
2: ये दिखाता है कि इन लोगों को ज्ञान की बहुत कमी है। ये लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये समय रैना न बिहार को अच्छे से समझता है और न तो जम्मू कश्मीर को अच्छे से समझता है। एक खुद एक जम्मू कश्मीरी है, लेकिन ये उनका भी सगा नहीं है और बिहारियों का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे क्या जरूरत है ये कहने की कि बिहारी पलायन करते हैं? अरे, रोजी रोटी के लिए देश में लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तुम कॉमेडी करो ना, किसी जाति को, किसी राज्य को, किसी धर्म को क्यों घसीट रहे हो बीच में?
3: हास्य एक इस प्रकार की दैवी कला है जो लोगों को प्रफुल्लित करती है, मन को हर्षित करती है, बोझ घटाती है। लेकिन जब आप उसका दुरुपयोग किसी जाति, समुदाय, क्षेत्र को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने में करते हैं या मजाकिया तरीके से चित्रित करने में करते हैं, तो उससे हास्य का महत्व घटता है। समय रैना को इस बात को समझना चाहिए।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
5: You are watching India Today.
6: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev, and during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
7: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। 2 दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
6: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
8: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। Thank you.
6: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier, and this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।

0: are watching India Today.
1: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honor in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
3: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है बहुत बहुत बधाई Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: are watching India Today.
1: Minister Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को

0: सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier, and this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: समय रैना हो या अन्य कोई कलाकार हो, हमने अतीत में भी देखा, वर्तमान में भी देख रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके पब्लिसिटी पाने के लिए ये किसी को टारगेट करते हैं। क्या कारण है? आप कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाओगे, बिहारी भाइयों का मजाक उड़ाओगे? ये सोच समझ करके पब्लिसिटी स्टंट है। और इन कहानी का अंत होता है कि माफी मांग करके द एंड, और उसके बीच में इतनी पब्लिसिटी जुटा लेते हैं कि आगे की दुकानदारी इनकी अपने आप चलती हो, फिल्म हो, सीरियल हो, या कोई कॉमेडियन समीर रैना जैसा कोई कलाकार हो।
1: नहीं, अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पर देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है।

0: are watching India Today.
1: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev, and during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honor in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखी आपकी, इसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste.
3: लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है बहुत बहुत बधाई Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: are watching India Today.
1: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे।

0: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजराती फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।

0: are watching India Today.
1: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honor in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday. Mr. Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है. मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे. ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई. हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए. हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं. इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा. हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी. हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे. हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी. हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे. दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो. यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे. आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं. हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए. आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है. भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है. हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं. एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं. स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला. ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो. ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो. इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया. ये भी दिल को छूने वाला था. यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं. दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है. मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं.
1: Now, we'll take you through the list of global honors, and in addition, the one that's seen a recent addition in Uzbekistan itself for the Prime Minister. Now, when we speak of 2026, let's start with the first one in Uzbekistan itself. The Order of Oli Darajili Dostalek that has been bestowed upon him only earlier today. On that note, in 2026 itself, in his last visit to Indonesia, he was bestowed with the Bintang Adipurna. Again, before that, it was Seychelles that he was visiting, where he was honoured with the Guardian of the Blue Horizon. Prior to that, Sweden, where he was given the Royal Order of the Polar Star Commander Grand Cross. Previous year, 2025, is when he was visiting Israel, and as the Speaker of the Knesset, he was given a medal for the same. 2023, it was in France when the Grand Cross of the Legion of Honour was bestowed upon him. 2020, before that, was in the United States Legion of Merit that he was awarded with. 2019, in Bahrain, it was King Hamad Order of the Renaissance. 2019, in Russia again, Order of St. Andrew the Apostle. And then in UAE, in the same year, Order of Zayed Award. And then 2016 is when we see, in Saudi Arabia, it's King Abdulaziz Sash. So this was a list of awards that's been bestowed upon him globally so far. Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste. आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है बहुत बहुत बधाई Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: are watching India Today.
1: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honor in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखी आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट

0: बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो, ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया, ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste.
3: Namaste.
2: आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: समय रैना हो या अन्य कोई कलाकार हो, हमने अतीत में भी देखा, वर्तमान में भी देख रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके पब्लिसिटी पाने के लिए ये किसी को टारगेट करते हैं। क्या कारण है? आप कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाओगे? बिहारी भाइयों का मजाक उड़ाओगे? ये सोच समझ करके पब्लिसिटी स्टंट है। और इन कहानी का अंत होता है कि माफी मांग करके द एंड, और उसके बीच में इतनी पब्लिसिटी जुटा लेते हैं कि आगे की दुकानदारी इनकी अपने आप चलती हो, फिल्म हो, सीरियल हो, या कोई कॉमेडियन समय रैना जैसा कोई कलाकार हो।
1: नहीं, अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है।
2: ये दिखाता है कि इन लोगों को ज्ञान की बहुत कमी है। ये लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये समय रहना न बिहार को अच्छे से समझता है और न तो जम्मू कश्मीर को अच्छे से समझता है। एक खुद एक जम्मू कश्मीरी है, लेकिन ये उनका भी सगा नहीं है और बिहारियों का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे क्या जरूरत है ये कहने की कि बिहारी पलायन करते हैं? अरे, रोजी रोटी के लिए देश में लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तुम कॉमेडी करो ना, किसी जाति को, किसी राज्य को, किसी धर्म को क्यों घसीट रहे हो बीच में?
3: हाथ से एक इस प्रकार की दैवी कला है जो लोगों को प्रफुल्लित करती है, मन को हर्षित करती है, बोझ घटाती है। लेकिन जब आप उसका दुरुपयोग किसी जाति, समुदाय, क्षेत्र को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने में करते हैं या मजाकिया तरीके से चित्रित करने में करते हैं, तो उससे हास्य का महत्व घटता है। समय रैना को इस बात को समझना चाहिए।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste.
3: लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ. मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है. बहुत बहुत बधाई. Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: are watching India Today.
1: Minister Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे जॉइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज

0: करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste.
3: Namaste.
2: आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier, and this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।

0: are watching India Today.
1: Minister Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स